करे सेवा साधु कै संग शोभा सुर देवा साधु कै संग पाप पलायन साधु संग अमृत गुण गायन साधु कै संग सब थान गम नानक साधु कै संग सफल जन्म साधु कै संग नहीं कछ काल दर्शन भेटत होत निहाल साध कै संग दुखत हरै साध कै संग नरक पर हरै साध कै संग इहां उहां सुहेला साध संग विचरत हर मेला जो इच्छा सुई फल पावै साध कै संग न बिरथा जावै पार ब्रह्म साध रिद बसै नानक उतरै साध सुन रसै साध कै संग सुनो हर नाओ साध संग हर के गुण गाओ साध कै संग न मन ते बिसरै साध संग सर्प निस्तरै साध कै संग लगै प्रभ मीठा साधु कै संग घट कर डीठा साध संग पया गै कारी साध संगत पई हमारी साध कै संग मिटे सब रोग नानक साध भेटे संजोग साध की महिमा वेदना जान है जेता सुने तेता बखियान है साध की उपमा ते गुण ते दूर साध की उपमा रही भरपूर साध की शोभा का नाही अंत साध की शोभा सदा बेअंत साध की शोभा उड़ते उचे साध की शोभा मूर्ते मुचे साध की शोभा साध बने आई नानक साध प्रभेद न पाई श्लोक मन साचा मुख साचा सोय अवर न भेखै एक सुबिन कोय नानक हे लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होय अष्टपदे ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप जैसे जल में कमल लेप ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख जैसे सूर सर्व का सोख ब्रह्म ज्ञानी कै दुष्ट समान जैसे राज रंग को लागै तुल भवान ब्रह्म ज्ञानी कै तीरथ एक जो वसुधा को खोदै को चंदन लेप ब्रह्म ज्ञानी का है गुनाओ नानक जो पावक का सर स्वभाव ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला जैसे मैल न लागे जला ब्रह्म ज्ञानी कै मन हुए प्रगास जैसे थरु पर आकाश ब्रह्म ज्ञानी कै मित्र सुत्र समान ब्रह्म ज्ञानी कै नाही अभिमान ब्रह्म ज्ञानी उड़ते ऊंचा मन अपने है सब ते नीचा ब्रह्म ज्ञानी से जन पय नानक जन प्रव्याप करे ब्रह्म ज्ञानी सकल क्रीना आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना ब्रह्म ज्ञानी की सब परमाया ब्रह्म ज्ञानी ते कछु बुरा न पाया ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टि अमृत वर्षी ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल युक्ता ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान ब्रह्म ज्ञानी को प्रयास ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश ब्रह्म ज्ञानी का गरीबी समाहा ब्रह्म ज्ञानी पर पुकार महा ब्रह्म ज्ञानी का नाही तंदा ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंदा ब्रह्म ज्ञानी कह हो सो भला ब्रह्म ज्ञानी सफल फला ब्रह्म ज्ञानी संग सगलो उधार नानक ब्रह्म ज्ञानी जप सगल संसार ब्रह्म ज्ञानी कह कह रंग ब्रह्म ज्ञानी कह बस प्रभ संग ब्रह्म ज्ञानी कह नाम आधार ब्रह्म ज्ञानी कह नाम प्रभार ब्रह्म ज्ञानी सदा सत जागत ब्रह्म ज्ञानी हम बुद्ध थ्यागत ब्रह्म ज्ञानी कै मन परमानंद ब्रह्म ज्ञानी कै कर सदानंद ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता ब्रह्म ज्ञानी एक संहिता ब्रह्म ज्ञानी कै हो चिंत ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत ब्रह्म ज्ञानी दुष्कर प्रव्याप ब्रह्म ज्ञानी का वट प्रताप ब्रह्म ज्ञानी का दस भट भागी पाई है ब्रह्म ज्ञानी का पर बल जाई है ब्रह्म ज्ञानी का खोज है महेश्वर नानक ब्रह्म ज्ञानी परमेश्वर ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है ब्रह्म ज्ञानी का सगल बन माहे ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद ब्रह्म ज्ञानी का सदा देश है ब्रह्म ज्ञानी का कथया ना जाए अथाख्यर ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाने ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने ब्रह्म ज्ञानी का अंत ना पार नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का करता ब्रह्म ज्ञानी सतजीव नहीं मरता ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरख विधाता ब्रह्म ज्ञानी नाथ का नाथ ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बने नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का तानी श्लोक उतार जो अंतर नाम सर्व में पेख्य भगवान निमुख निमुख ठाकुर नमस्कार नानको अपरस सकल निस्तार अष्टपदी मिथ्या नाही रसना परस मन में प्रीत निरंजन दर्श पड़त्र रूप न पेख नेत्र साधगी टैल संसंग हेत कर्ण ना सुने का हो कि निंदा सब ते जाने आप सुखा मंदा गुर प्रसाद पेख्या पर हरे मन की वासना।

इंद्रित पंच दुखते रहत नानक कोट मध्य को ऐसा परस वैष्णो सूर्य सो परस परसन विष्ण की माया से हुए फैन कर्म कर तो वै ने कर्म तस वैष्णो कांदन मन धर्म काहो फल की इच्छा ने बाचै केवल भगत कीर्तन संग्राचै मन तन अंतर सिमरन गोपाल सबो पर होवत कृपाल आप दृढ़ अवर नाम जपावै नानक ओह वैष्णो परम गत पावै भगवती भगवंत भगत का रंग सगल त्याग दुष्ट का संग मन ते बिन सह सकला भरम कर पूजा सकल पार ब्रह्म सा संग पापा मन होवे तिस भगवती की मत उत्तम होवै भगवंत की टहल करै नित नित मंत नरपे विष्णु प्रीत हर के चन हृदय बसावै नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावै सो पंडित जो मन प्रबोध है राम नाम आत्म सोद राम नाम सार रस पी वै उस पंडित के उपदेश जग जीवै हर की गता हृदय बसावै सो पंडित फिर जो नना आवै वेद पुराण सिमत बूझै मूल सुख मैं जाने असूल चौबरना कौ दे उपदेश नानक उस पंडित को सदा देश बीज मंत्र सर को ज्ञान च वरना मैं जपै को नाम जो जो जपै तिसकी गत हो सा संग पावै जन कोय कार कृपा अंतर उतार है पशुप्रेत मुग्ध पात्र का तार है सर्वरूप का औखद नाम कल्याण रूप मंगल गुण काम काहो जुगत के तना पाइया धर्म नानक तस्मिला जिस लिखिया तुर कर्म जिसके मन पार ब्रह्म का निवास तिसका नाम सत रामदास आत्म राम तिस नदरी आया दास संतन पाए तन पाया सदा निकट निकट हर जान सो दास सदगै परवान अपने दास को आप कृपा करे तिस दास को सब सो जी परै सगल संग आत्म दास ऐसी जुगत नानक राम दास प्रभु की आज्ञा आत्म तावै जीवन मुक्त सौ कहावै तैसा हरक तैसा उस सोग सदा अनंत नहीं वियोग तैसा सुवर्ण तैसी उस माटी तैसा अमृत तैसी बिखाटी ऐसा मान तैसा अभिमान तैसा रंग तैसा राजान जो वर्ता ऐसा ए जुगत नानक ओह परख या जीवन मुक्त पार ब्रह्म के सगले ठाउं जित जित कर रखे तैसा तन नाम वापे करन करब जो प्रभावे सोई फन हो गए पसरे वाप हुए अणदत रंग लख न जाए पार ब्रह्म के रंग जैसी मत दे तैसा बरगास पार ब्रह्म करता विनाश सदा सदा सदा दयाल सिमर सिमर नानक पै निहाल श्लोक हो सद करे अनेक जाने अतना पारा वार नानक रचना प्रभ रचे बहुविधनक प्रकार अष्टपदी कई कोट हुए पुजारी कई कोट आचार व्यवहारे कई कोट पै तीर्थवासी कई कोट बन भ्रमय उदासी कई कोट वेद के स्रोते कई कोट विसर होते कई कोट आत्म ध्यान तारें कई कोट कब का विचार है कई कोट नव तो नाम त्यावे नानक करते कांत न पावै कई कोट पह अभिमानी कई कोट अंध ज्ञानी कई कोट कृपन कठोर कई कोट भिग आत्म निकोर कई कोट पर दर्प कह हिरें कई कोट पर दुख न करें कई कोट माया शरमाहें कई कोट पर देश पर माहें जित जित लाभ हो तित तित लगना नान करते कीटा न करता रचना कई कोट सिद्ध ज्योति योगी कई कोट राजे रस भोगी कई कोट पंखी सर्व पाए कई कोट पाथर वृख ने बजाए कई कोट पवन पाणी वै संतर कई कोट देश भूमंडल कई कोट सस्यर सूर नखियत्र कई कोट देवदान विंद्र सिर छत्र सगल समगरी अपने सोच तार नानक जिस भाव है तिस तिस निस्तार कई कोट राजस्थान सत कई कोट वेद पुराण सिमर तरसास कई कोट किए रत्न समुद कई कोट नाना प्रकार जंत कई कोट किए जर जीवे कई कोट किरे मेर सबन थीवे कई कोट चख किनिरपिसाच कई कोट भूत प्रेत सुकर मृगाच सब ते नेरे सब होते दूर नानक अपलिप्त रहया भरपूर कई कोट पाताल के वासी कई कोट नरक स्वर्ग निवासी कई कोट जन्म जीवै मर है कई कोट बाजो नि फिर कई कोट बैठत ही खाहे कई कोट काल तक पाहे कई कोट किए तनवंत कई कोट माया में चिंत जय जय पाणा तै तै राखे नानक सब कुछ प्रभु के हाथे कई कोट पै बै रागे राम नाम संग तन लिवलागे
ਕਈ ਕੋਟ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਖੋਜਨ ਤੇ ਆਤਮੈ ਭਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਲਹੰਤੇ ਕਈ ਕੋਟ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਪਿਆ ਸੁਤਨ ਕਮਲ ਪ੍ਰਭ ਵਿਨਾਸ ਕਈ ਕੋਟ ਮੰਗ ਹੈ ਸਤਸੰਗ ਭਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤੇ ਲਾਗਾ ਰੰਗ ਜਨ ਕਾ ਹੋਇਆ ਸਭ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਾਨਕ ਤਿਜਨ ਸਦਾ ਤਨ ਧਨ ਕਈ ਕੋਟ ਖਾਣੀ ਅਰਖੰਡ ਕਈ ਕੋਟ ਕਾਸ਼ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਕਈ ਕੋਟ ਹੋਏ ਅਵਤਾਰ।

कीर्तन गाइए, बहड़ ना जो नहीं पाइए। जिस देवै पुरख विधाता, हर रस तिन ही जाता। जम कंकर नेड़ ना आया,

सो क्यों विसरै मेरी माए, साचा साहिब साचै नाए रुहाव। साचे नाम की तिल वड़ियाई, आग थके कीमत नहीं पाई। जैसा मिलकै आखण पाहे, वड्डा ना होवै घाट ना जाए। ना ओह मरै ना होवै सोग, देंदा रहै न चूकै भोग। गुण एहो होर नाहीं कोए, ना को हुआ ना को होए। जेवड़ आप तेवड़ तेरी दात, जिन दिन करकै कीती रात।

या शैल पत्थर मह जंतु पाए ताका रिजक आज्ञा कर तरिया मेरे माधो जी सत संगत मिले सो तरिया गुर प्रसाद परम पद पाया सूके काष्ट हरिया रहाओ जनन पिता लोक सुत बनिता कोई न किसकी तरिया सिर सिर रिजक संभाही ठाकुर काहे मन भाव करिया ऊडे ऊड आवै सह कोसा तिस पाछै बचरे शरिया।

करो प्रतपारा। हमरे दुष्ट सबै तुम काव हो, हाथ दै मोहि बचाव हो। सुखी बसै मोर परिवारा, सेवक सिख सबै करतारा। मोर अच्छा निज कर दै करियै, सबैरन को आज संघरियै। पूर्ण होए हमारी आशा।

हमारे तारिया है, चुन चुन सत्र हमारे मारिया है। आप हाथ दय मुझे उबरिया है, मरण काल का त्रास निवरिया है। हो जो सदा हमारी पच्छा, श्री अस्तु जो करिय रक्षा। राख ले हो मोहे राखन हारे, साहिब संत सहाय प्यारे।

के सुखी एक एक की पीर पछानै घट घट के पट पट की जानै जब उद करख करा करतारा प्रजा धरत तब देह अपारा जब आ करख करत हो कब हूँ तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ जेते बदन सृष्ट सब धारै आप आपनी बूझ उचारै तुम सब हीते रहत निरालम जानत भेद भेद अर आलम निरंकार निर्विकार निर्लंब आद अनिल अनाद असंभ ताका मूढ़ उचारत भेदा जाको भेव न पावत भेदा ताको कृपा हने अनुमानत महामूढ़ कछ भेद न जा।

रच दीनी कहूँ फूल राजा हुआ बैठा कहूँ सिमट भयो शंकर इकैठा सिगरी सृष्ट दिखाए अचंभव आद जुगाद स्वरूप स्वयं भव आव रक्षा मेरी तुम करो सिख उबार सिख संगरो दुष्ट जिते उठवते उत्पाता सकल मलेश करो रणकाता जे अस्तुज तब सरणी परे तिनके दुष्ट दुखित हुवै मरे पुरख जवन पग परे ते हारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार त्याय है ताके काल निकट नह ऐ है रक्षा होए ताहि सब काला दुष्ट अरिष्ट टरें तत्काला कृपा दृष्ट तन जाहि निहर हो ताके ताप तनक मैं हर हो रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट शाह श्व सकै न कोई एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फास्ते ताहि वारा।

कृपा करी हम पर जगमाता ग्रंथ करा पूर्ण सुब्रता किलबिक सगल दे को हरता दुष्ट दोखियन को शय करता श्री अस्तु जप भय दयाला पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला मन बांछत वल पावै सोई दुख न तिसै व्याप्त कोई अड़िल सुनै गुंग जो जाहि सुरस न पावै सुनै मूढ़ चित लाए चतुरता आवै दुख दर्द भौ निकट न तिन नर की रहै हो जो या की एक बार चौपाई को कहै चौपाई संबत सत्रह है सहस पणिजै अर्ध सहस पुन तीन कहिजै भाद्रव सुधि अष्टमी रवारा तीर स्तद्रव ग्रंथ सुधारा

जिन्हां नूं आस लग जा, आस लग गई। साहिब कलगीधर पातशाह दे चरणां च रहण वाला जिहदा नाम सुथरा, साहिब कलगीधर पातशाह दे चरणां विच हर वक्त सेवा करदा, सतगुरां दे दीदार करदा, जदों दिल चाहे अंदर चले जांदा, जदों दिल चाहे बाहर आ जांदा। पर एक दिन पहरेदारां ने विचार कीती होवे ना, असीं पहरे ते खड़े हुंदे आ, आ सुथरा जदों इहदा दिल करदा अंदर चले जांदा, बिना पुछिया चले जांदा, होवे ना इहनूं इनकार कर दिता जाए, मना कर दिता जाए। पहरेदारां ने सुथरे नूं बुलाया, सुथरिया अज तों बाद तूं अंदर नहीं जा सकदा, बिना पुछिया तूं अंदर नहीं जा सकदा, तेरे पास भेटा होवेगी, प्रसाद होवेगा ते अंदर जा सकदा। पर सुथरा इतना गरीब कित्थों धन लियावे, रोज दीदार करन वास्ते कित्थों माया लैके आवे, कित्थों प्रसाद लियावे। पाबंदी लग गई, पर हर वक्त सतगुरां दे चरणां विच रहण वाला सुथरा हुण सतगुरां दे दीदार तों बगैर किवें रह सकदा। अमृत वेला होया, अंदर जाण लगा, पहरेदारां ने बाह तों फड़िया, रोक दित्ता। मन विच बड़ी सट वज्जी, पहरेदारां ने पाबंदी ला दित्ती। शाम पई, फिर जाण लगा ते पहरेदारां ने झाड़ पाई, सुथरिया किन्नी बार तैनूं कहना पवेगा, अज तों बाद तूं अंदर नहीं जा सकदा, तेरे पास भेटा होवेगी मत्था टेकण वास्ते ते अंदर जा सकदा। सुथरे दे नेत्रां चों जल वहण लग पे, मन भर गया। सारी रात लंघ गई, दूजा दिन होया, अमृत वेला। हुण मन बेबल है, केड़ा वेला होवे सतगुरां दे दीदार हो, नेता पर सतगुरां दे चरणां विच रहण वाला, अज दो दिन दर्शन ना होए, नेत्रां चों जल वहण लग गया। पर बाहर बैठे हां, मन विच एक ख्याल उत्पन्न होया, मना जे झूठ भी बोलना पवे सतगुरां दे दीदार करन वास्ते ते कोई अर्ज नहीं, अपने वास्ते झूठ तां नहीं बोलना, दीदार वास्ते झूठ बोलना है। मन विच फुरना बन गया, जे माया नहीं प्रसाद नहीं ते एक रेत दी पंड बन लैना, रेत दी पंड बनी सिर ते दूरों आवाज देंदा जांदा, कहिंदा राह छड्ड दिओ, गुरु के लंगर वास्ते खंड ले जा रहे। रेत दी पंड सिर ते चुकी, पहरेदार परे हट गए, सुथरा अंदर लंघ गए। जदों अंदर लंघ गया, सतगुरु जिथे बैठे सन थोड़ी दूर वो रेत वाली पंड रखी, ते सुतरा पंड दी परिक्रमा करन लग पिया, बार बार पंड नू नमस्कार करदा, बार बार परिक्रमा करदा, मत्था टेकदा। सेवादारां ने तकिया, सतगुरु ने बेनती की, सतगुरु आ तकिया जे सुथरा, आप सिंघासन ते बैठे हो ते पंड नू मत्था टेक रहे है। साहिब कहन लगे, सुथरिया अज की हो गई? सुथरा पब्बा मार के रो पिया, कहन लगा, पाछा अज इस पंड नू मत्था ना टेका ते किनू टेका, अज इहदी परिक्रमा ना करा ते किहदी करा, पाछा अज तेरे पहरेदारां ने पाबंदी ला दित्ती कि तू दीदार करन अंदर नहीं जा सकदा, तेरे पास भेटा होवे ते अंदर जा सकदा, पाछा मैं कित्थों धन लिया, कित्थों प्रसाद लियावा, अज तेरे पहरेदारां नू झूठ बोल के आया कि गुरु के लंगर वास्ते खंड ले जा रहे हां, पाछा रेत दी पंड है, अज ये सदका तेरे दीदार हो गए, ये सदका अज मैं अंदर आके तुहाडे चरणां विच सेवा कर सकदा, पाछा इहनू मत्था ना टेका ते किहनू टेका, जिहदे सदका तेरे दीदार हो गए। गुरु कलगीधर पातशाह ने सुथरे नू गलवक्कड़ी विच लै लिया, प्यार कीता कुट के, कहन लगे, अच्छा जा सुथरिया, तेरी ये भेटा भी प्रवान, भावे तू रेत भी पंड लैके आया है, जा अज तो बाद लंगर विच इसे रेत नाल पांडे मांगे आदार हो गए। आओ भाई, अज आप भी मांग लीए मेरे हर प्रीत।

राम रघुवान सखायो, द्वापर कृष्ण मुरार कांस कीर्तार्थ कियो, उग्र सैन कर राज अपै भगते जन दियो, कलयुग प्रमाण नानक गुर अंगद अमर कहायो, श्री गुरु राज अवचार।

सुख दियो परीक्षत गुण रवै गौतम रिख जस गायो कब कलस जस नानक गुर नित नव तन जग छायो।

0: प्रसाद चकर के नर भर जात और पात नहीं जे
1: रूप रंग रे पे को कह न सकते
0: अचल मूर्तम अर्प अनपो प्रकाश अमितोज कही जे
1: ओट इंद्रान सहो सान कि दंचे
0: श्री पवन महीप सुर नर असुर नेत नेत।

नमस्ता निर्कर्मे नमस्ता निर्परमे नमस्ता निर्नामे नमस्ता निर्कामे नमस्ता नरदूते नमस्ता।

0: नमो सर्व मंत्र नमो सर्व जंत्र
1: नमो सर्व
0: रंगे त्रिभंगी अनंगे
1: नमो जीव जीवन नमो बीज बीजे
0: अखिजे अपीजे समस्तं।

0: ब्रह्म
1: स्वरूप के अनपो अनुपे
0: देवे के आप पे
1: चित्र महीने के अधीन
0: रोजी रजा के रही में रहा
1: गैब है के गैबल गैब है
0: के शाहन शाह
1: के कारण कुनंद है के रोजी दहन है
0: राजक रहीम है के कर्म करीम है
1: के सर्वंकली है के सर्वंदली है
0: सर्वत्र मानिए के सर्वत्र दानी
1: के सर्वत्र गौने के सर्वत्र पौने
0: सर्वत्र देश है के सर्वत्र पे
1: के सर्वत्र राज्य के सर्वत्र साजे
0: सर्वत्र दीने के सर्वत्र ली
1: के सर्वत्र जाहो के सर्वत्र पाहो
0: सर्वत्र देश है के सर्वत्र पे
1: के सर्वत्र काने के सर्वत्र पाले
0: सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता
1: के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी
0: सर्वत्र काजे के सर्वत्र राजे
1: सर्वत्र सोखे के सर्वत्र गोखे
0: सर्वत्र त्राणे के सर्वत्र प्राणे
1: सर्वत्र जैसे के सर्वत्र प्रेसे
0: सर्वत्र मान्य सदैव प्रदानी
1: सर्वत्र जापिये के सर्वत्र थापिये
0: सर्वत्र पाणे के सर्वत्र माने
1: सर्वत्र इंद्र के सर्वत्र चंद्रे
0: सर्वं कलीमे के परमं फहीमे
1: आकल अलामे के साहिब कलामे
0: सुलवजू है तमाम रजू
1: है हमें सुलसलामे सलिखुत मदामे
0: मिल शिकस्ते गरीब पस्ते
1: बलिदुल मकाने जमीनु जमाने
0: मेरे जूल निदान
1: हरि खुला दी मेरे जाए की अकीम
0: अनेक तरंग है पेदे अपंग है
1: अजी जो निवाद है कनी मुर्ख राज है
0: स्वरूप द्र मुक्त भूत
1: है प्रभु प्रभा है संयुक्त सुधा है
0: दैवम स्वरूप है पेदी अनूप
1: समस्त उपराज है सदा सर्व साज है
0: सलामे सदैव अलकार
1: निर्वाद स्वरूप है दाद है अनूप है
0: अनाद रूप है अनाद स्वरूप
1: अनंदी अनाम है त्रिभंगी त्रिकाम है
0: वर्गं त्रिपादे अगंजे अगादे
1: सुबन सर्पागे सुसर्पा अनुरागे
0: स्वरूप
1: के नरकम प्रनाश है प्रचुर प्रवास है
0: प्रवाह सदैव सदा है
1: विभुक्त स्वरूप है प्रयुक्त अनुप है
0: अनुप है अनुक्त सदा है विभुक्त प्रवाह है
1: अनुक्त स्वरूप है प्रयुक्त

0: चार्पण्यता प्रसाद
1: भगवंता सर्वंगंता
0: सर्वंख्याता सर्वंज्ञाता
1: सर्वंहर्ता सर्वंकर्ता
0: सर्वंप्राण सर्वंत्राण
1: सर्वंकर्मं सर्वंतर
0: सर्वंजूता सर्वंभूता
1: सावल शांतो ए प्रसाद नमो निर्कनास सदैवं प्रकाश
0: अनंद स्वरूपे अपन्न प्रभुते
1: मातं परमाते सदा सर्वसाद
0: अगाध स्वरूप निर्वाद प्रभुते
1: अनंगी अनामित निर्भंगी त्रिकामे
0: निर्भंगी स्वरूपे सर्वंगी अनुपे
1: न पुत्रे न सत्रे न मित्रे
0: न दाते न माते न चाचे

0: वाचन त्वय प्रसाद मुन्मन प्रणाम गुणगन मुदाम
1: हर नर पर बंज
0: अनगन प्रणाम मुन्मन सलाम
1: हर नर अखंड बर नर मंड
0: अनुभव अनास मुन्मन प्रकाश
1: गुणगन प्रणाम जल थल मुदाम
0: चीज अंग आसन पंग
1: अपार कर मित
0: जल थल मंड दिस विश अपान
1: जल थल मंड दिस विश में
0: अनुभव अनास तिद दुरा
1: आजान बाहु एके सदा
0: ओंकार आद कथनी अनाद
1: खल खल ख्याल गुर बर अकल
0: गल गल प्रणाम चिचर नाम
1: अचिच गात अचिच नवाद
0: अंज जुगात अंज बात
1: अटुट पंडार अठट अपार
0: आदिच तर्म अतडिट कर्म
1: अनबण अनंत दात

0: जपन
1: अतरम त्रित है सर्वा कृत है
0: हत्ता कर है हत्ता हर है
1: परमात्म है सर्वात्म है
0: आत्म बस है जस के जस
1: उलंग पर्यात चंद्र नमो सूज सूजे नमो चंद्र चंद्र
0: नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्र
1: नमो अंधकार नमो तेज तेज
0: नमो बृंद बिंदे नमो बीज बीजे
1: नमो राज संताम संसांत रूप
0: नमो परम

सुरंग सुवारे पारी बुजान के पूप बली बित न्यावत सीसना जात बिचारे जीत फिरे सब देश दिसान को बाजत टोर मृदंग नगारे भूत भविक भवान।

0: तोरीन मरोर मासन माते मतंगन मान मलेंगे
1: चलेंगे
0: वीर पार बड़े बरियार बिचारे सार की तार बछैया गाड़े गड़ान को तोड़न हार सो बातन ही चक चार लवैया दानव देव निन्न साचर भूत भविख भवान जपेंगे उन प्रतापन बाट जैत तुन पापन के भो पुंज खपेंगे मानव इंद्र गजिंद निरादप जोन तर लोक को राज करेंगे ब्रह्म महेशन बिशन सचिपत अंत फसे जम फास परेंगे
1: श्री पति के प्रसन्न

0: आनंद सब को कहे आनंद गुरु ते जानिया
1: जाने आनंद सदा गुरु ते कृपा करे प्यारिया
0: कर कृपा किल विकटे ज्ञान अंजन सारिया
1: अंदरो चित्त का मोह टूटा तिनका सबद सचे।

0: एक ओंकार सतगुर प्रसाद पातशाही दसवीं तप प्रसाद सवैये दीनन की प्रतपाल करे नित संतो बार गनी मन गारे भोगत है जल में थल में पल में कल के नहीं कर्म बिचारे
1: देखत है पर देत न हारे
0: दात है दुख दुखन को दल दुजन के पल में दल डारे
1: अखंड प्रचंड पारन पूर्ण प्रेम की प्रीत संभारे
0: पार न पाए सके पद्मापत भेद कतेव भेद उचारे पतंग को रंग भुजंगम भूत भविख भवान बनाए वेद प्राण कते बुकरान हसेव तके कर हाथ नाए
2: प्रेम प्रभाव बिना बच्चो किन श्री पद्मा पद पाए
0: आद अनंत गाद द्वैक सो भूत भविख भवान अपे है
2: अंतविहीन अनातम आप अदाक अदोक अशिद्र अशे है
0: लोगन के करता हरता जल में थल में परता प्रवे है
2: दयाल दया का श्रीपद सुंदर श्री पद्मा पते है
0: कामना क्रोध न लोभ न मोह न रोग न सोग न भोग न पह
2: है।

0: अपनों कर दे कर पाप सबूना पेटन पावे
1: पाप का के तो सो सो पेट पीत बचावे
0: जाजु पजांग सो दानव देव पेव तुम्हें सभी कर त्यावे
1: आकाश पताल रसातल जाच पजांग सबे सिर ल्यावे
0: पाय सके नी पार प्रभाहु को नेति नेते बेद बतावे
1: और तके सभी कुछ या सुरहार परे हर हाथ दावे
0: नारद से चुदरारन से रुम नारक से सब हूँ मिल गायो
1: पेद लख्यो सब हार परे हर हाथ दावे
0: पाय सके नी पारो मापत सिद्ध सनात सनंतन त्यायो
1: ज्ञातरो ते को मन में जे को अमितो सबे जग छायो
0: वेद पुराण कतेब कुरान पेद निर्पाण सबे पछारे
1: वेद न पाए सक्यो अन पेद को खेद ते अछेद पुकारे
0: न रूप न रेख न रंग न साख न शोक न सांग तिहारे
1: आद अनाद अगाद अबे अद्रैक जप्यो किल ही कुल

मात पिता हम बारिक तुम्हारी कृपा में कोई न जाने तुम्हरा उच्चे ते ऊंचा भगवन सगल समगरी तुमरे सूत्र तारी तुम ते हो सो तुमरी गात मित तुम ही जानी नानक दास। बोलो जी वाहिगुरु। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याय फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदास हुई सहाय। अर्जुन हर गोबिंद नौ सिमरव श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई जिस डिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरै घर नौनी दयावै ताई सब थाई होए सहाय। दसवां पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब था

जैसी सर सरिता सकल में समुंदर बड़ो, मेर में सुमेर बड़ो, जगत बखान है बिरखन बिखे जैसे चंदन बिरख बड़ो, तातन में कंचन अत उत्तम कै मान है, पंछियन में हंस मृगराजन में सारदूल, रागन में श्रीराग पारस पखान है, ज्ञानन में ज्ञान अर ध्यानन में ध्यान गुर, सकल धर्म में है गृहस्थ प्रधान है, ज्ञानन में ज्ञान अर ध्यानन में ध्यान गुर, सकल धर्म में है